आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड वेक काउंटी के कमिश्नर्स जल्द ही एक बड़े फैसले पर वोट करने वाले हैं, जिससे क्षेत्र में बड़े अस्पतालों दैट इज वेक मेड और आरटीएम हेल्थ के कोलैब हो सकता है। ये न्यूज सामने आ रही है एंड ये अगर कोलैब होता है तो काफ़ी अच्छा कोलैब रह सकता है, ऐसा भी कहना है और दैट इज होना चाहिए ऐसा लगता है। तो ये वोट करने वाला है, वोटिंग के प्रक्रिया के ऊपर ही निर्धारित रहेगा कि क्या होने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि अगली बार क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं। तो वेकमेड और आरटीएम हेल्थ के कोलैब की खबरें जो है वो आ रही है, इसके लिए वोटिंग जारी कर रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

हेलो हाय कज़ग आए, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड या अगला ही खबर जो है वो होटल इंडिगो की वापसी। डाउनटाउन रैली का एक मशहूर पुराना होटल अब नए रंग रूप में होटल इंडिगो के नाम से दोबारा खुलने जा रहा है। इससे शहर में आने वाले पर्यटकों और बिजनेस यात्रियों को ठहरने का एक शानदार नया ठिकाना मिलेगा। होटल जो है ये काफ़ी मतलब फेमस था पहले से, लेकिन नूतनीकरण होने के बाद ये होटल जल्द ही आपकी सेवा में उपलब्ध रहने वाला है। एंड बाकी तो यार मौसम के बारे में कहूँ तो वीकेंड का मौसम सेट है, वीकेंड की वाइब भी सेट है और सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, पक्का देसी तो है पक्का लोकल भी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है मुंबई माया नगरी से डायरेक्टली खबरें जो है वो आप तक पहुंचाने का, बॉलीवुड की खबरों के बारे में बात करने का। तो पहली खबर है अजय देवगन की आली रे आली आटा ठूठे बारी आली। रिपोर्ट के अनुसार रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल का अगला जो पार्ट है वो रिलीज डेट को लेकर फैंस काफ़ी जो है वो उत्सुक है। वही दूसरी तरफ अजय देवगन और संजय दत्त की आने वाली बड़ी फिल्म रेंजर की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ाया गया है, जो अब 2027 में रिलीज होगी। ये दो बड़ी अपडेट अजय देवगन के बारे में अजय देवगन के फैंस के लिए। एंड दृश्यम का जो ट्रेलर है वो तो आ ही चुका है, मतलब विजय सालगांवकर अब क्या करने वाला है आगे, केस दोबारा खुलने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये तो फिल्म ही बताएंगी। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स। अगली खबर है बॉलीवुड की क्वीन यानी करीना कपूर बेबो के बारे में। फिल्म मेकर मेघना गुलजार ने अपनी आने वाली फिल्म क्राइम थ्रिलर फिल्म दायरा की शूटिंग पूरी कर ली है एंड इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जिसे लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी बज बना हुआ है। करीना कपूर की तारीफें भी जो है वो जम के करी जा रही है। शी इज़ द ओनली क्वीन ऑफ बॉलीवुड। करीना कपूर देखने के बाद जो एक्चुअल में हीरोइन होनी चाहिए वैसा उनका हमेशा का तेवर रहता है एंड वो उन पर काफ़ी अच्छी तरह से सूट करता है। मतलब हीरोइन का एटीट्यूड तो करीना पे ही जाता है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। तो दायरा फिल्म जो है इसकी लाइक चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही थी और तारीफें भी करीना की जमकर हो रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पुंडरी बना नाइट्स। आईफोन 80 का क्या ट्रेंड चल रहा है भैया? हर कोई आईफोन 18 मतलब सेलेब्स की बात कर रहा हूँ यार, है ना। इतना महंगा है कि सेलिब्रिटी खरीद पाएगी? हर कोई आईफोन 18 खरीद रहा है। तो भारत में नए आईफोन की बिक्री शुरू होते ही बॉलीवुड सितारों में इसे खरीदने की होड़ मच गई है। विक्की कौशल और दिशा पटानी जैसे सितारे इसे खरीदते दिखे। इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक फनी पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि नया फोन नई EMI लेकिन बिल वही पुराने। उन्होंने लोगों को दिखावे के बजाय समाज की मदद करने की सलाह दी। अब देखिए कैसा है कि फ़ोन काफ़ी सुर्खियों में है और एक्चुअल में जो कलर है ना इतना प्यारा लग रहा है, बहुत लोग ट्रोल भी कर रहे हैं लेकिन कलर काफ़ी सुंदर लग रहा है। बरगंडी कलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यार अपनी अपनी चॉइस है ना, अपने लिए भी जीना चाहिए। सुनते हैं अगला।

गाओ हरे ला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो

0: मतलब अब आईफोन भी कह रहा होगा, लग रहा हूं ना मैं जैसा मैं था। एग्जैक्टली यार, मतलब आईफोन का ऐसा हो चुका था ना, प्राइजेस इतनी कम हो चुकी थी कि हर कोई दूसरा शख्स आईफोन खरीद रहा था। और उसके बाद आईफोन एक कॉमन चीज़ हो गई थी जो पहले आईफोन आया करते थे, 2012 के टाइम की बात कर रहा हूँ। तब ऐसा रहता था कि बहुत लिमिटेड लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वही खरीदते थे, लेकिन इतने में हाल ही में बहुत लोग खरीद रहे थे। तो आईफोन भी अब कह रहा होगा, अच्छा हो गया, अब मेरा कुछ रेपुटेशन रहेगा मार्केट में, लग रहा हूँ ना जैसा मैं था। वैसा ही तो यार, अच्छा है अभी, मतलब अच्छा हो गया, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा हो गया। आईफोन की प्राइजेस जो है वो बढ़ रही है, मतलब एक जो डिफरेंस है आईफोन और बाकी के फ़ोन यूजर्स में वो दिखाई देगा, दिखना ज़रूरी है। इन्जॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंड लव रंजन की नई फिल्म का जो है वो पहला लुक जो है वो जारी कर दिया है। मशहूर डायरेक्टर लव रंजन ने अपनी नई फ्रेंडशिप कॉमेडी फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का रंगा बिरंगा पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म में वो 6 नए चेहरों को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं और इसका ट्रेलर जो है वो 21 सितंबर को आने वाला है। तो ये जो है पहला प्यार दूसरी बार, मतलब नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है यार कि मतलब वो एकदम पुरानी मूवीज नहीं हुआ करती थी जिनके अजीबोगरीब नाम हुआ करते थे, वो टाइप में फिल्म लग रही है। फिलहाल कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? मौसम के बारे में बात करूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा है। इस अच्छे मौसम में एक कप कड़क चाय या फिर अच्छी खासी झंझनादी कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, पक्का

अब सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स एंड फिल्म रामायण का गाना मैंने सुना एंड गाना वाज टू ब्यूटीफुल जो कंपोजिशन ए आर रहमान ने की है। अप टू द मार्क, लाइक जो म्यूजिक दिया है ना कमाल का है और पिक्चराइजेशन गाने का बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे ही रणबीर कपूर का जो गाना है हिट हो गया है वैसे निगेटिव पीआर टीम जो है वो भीड़ गई है रणबीर के पीछे। उनके पुराने कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वो डाइट पे थे, उन्होंने एक जगह पे आई गेस प्रसाद नहीं लिया था तो बस ट्रोल करे जा रहे हैं कि भगवान राम तो प्रसाद ही नहीं खाते। तो इट्स लाइक दैट, मतलब फेमस अगर कोई चीज़ होती है तो लोगों को देखा नहीं जाता ऐसा मुझे लग रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो रामायण का गाना काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है, उतना ही सुंदर देखने में भी नजर आ रहा है।

वेल एंजॉय किया आपने ये गाना. गाना था वाकई में काफी बेहतरीन और रणबीर कपूर इतने लाइक मैं क्या बताऊँ ये कैरेक्टर में जच रहे हैं यार, बहुत मजा आ गया. पिक्चराइजेशन एंड जो यू नो एक आपने देखा होगा कि गाने में थोड़ा गोल्डन कलर सा बैकग्राउंड देखने मिलता है, VFX देखने मिलता है बैकग्राउंड में, वो प्रभु रामचंद्र के वो ईरा में डायरेक्टली लेकर जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है. जो हल्का हल्का हल्का अगर आपने बारकाई से ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया होगा तो आप कर सकते हैं कि एक गोल्डन हल्का सा कुछ तो भी VFX में नज़र आ रहा है. एंड जिस तरह से गाने का म्यूज़िक है, ट्रस्ट मी AR रहमान, मज़ा आ गया. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है एंड बने रहिएगा. एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

हेलो हाय कज़क काय, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडरीवना नाइट्स, एंड आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन 18 के एप्पल प्ले स्टोर से, मतलब आईफोन 18 से भी आप कर रहे हो तो आपको सिंपली रेडियो नायरा ही टाइप करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट एन ऐप, ऐप मिलने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, एंड उसके बाद एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक देश और दुनिया के किसी भी कोने से। बस आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एंड थैंक यू सो मच अगेन रेडियो नायरा को इतना सारा प्यार देने के लिए। कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? मौसम तो सुहावना हो रखा है, एंड 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इसी शो पर, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए एंड लाइक अपने लव वंस के साथ खुश रहिए। मिलूंगा कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: छोरों को पीटना है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तो जो भी कहेगी वो सब कराएंगे मम्मी।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ।
3: रे इतनी जल्दी भूल गई?
4: यो के बात कर रहा है महावीर? छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Dial up ekho jao Pakka Desi.
2: कृपया ध्यान दें, आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जॉन कॉर्डवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 टू 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

0: क्यों कर बनाई दुनिया, इतना तो बता देता। सभी पूछते हैं ये बात कि क्यों कर बनाई दुनिया, इतना तो बता देता, या पूछने की खातिर घर का ही पता देता। सदियों से दुनिया ऊपर वाले को तलाश कर रही है, ढूंढ रही है कि कहां से आता है, कहां चला जाता है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हैं, सब लगे हैं। ना वो मिलता है, ना पता देता है, और घर बहक जाऊं तो जंजीर हिला देता है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि वी आर योर होस्ट अफरोस्ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices.

अपना चांद और अपनी रात क्यों ना दोनों साथ रखें, अपना चांद और अपनी रात क्यों ना दोनों साथ रखें, ऐसा ना हो हम बट जाएं, रात और चांद भी बांट रखें। यू आर लिसनिंग टू गीत।

हमको छोटी रात मिली और मिली बड़ी सी बात। अरे हमको छोटी रात मिली और मिली बड़ी सी बात। चांद जो आधा बचा फलक में, ले गया आधी रात।

कहां गुजारी थी रात तूने, अरे तेरी दलीलों से थक चुके हैं। कहां गुजारी थी रात तूने, तेरी दलीलों से थक चुके हैं, और लबों से तेरे जो दिख रहा है, लबों से तेरे जो दिख रहा है, दलीलें तेरी हम रख चुके हैं। खातिनो हजरात, तन्वी तेजानी की ये फरमाइश थी ऑस्टिन टेक्सस से। नयरा नूर की आवाज़, जो पाकिस्तानी गुलूकारा हैं, और एल्बम का नाम है उस पार के नगमे। वेरी ट्रेडिशनल सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, जो आपने जाने कितने लोगों की जुबान से और आवाज़ में इसको सुना होगा, चन्ना किथे गुजारे आई रात वे। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, भरत व्यास का कलाम, मौसीकी थी सी राम चंद्र की, फिल्म का नाम था नवरंग, 1959 की यह फिल्म थी। आ क्या बात है, आधा है चंद्रमा रात आधी। और उससे पहले बता दूं आपका गुलूकार महेंद्र कपूर और आशा भोसले। और अब जनाबे वाला आते हैं एक ऐसे नगमे पर जो कितनी बार फिल्में उस पर बन चुकी हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देवदास, जिसका नाम है देवदास, 1935 में बनी, फिर देवदास 1955 में बनी, फिर एक देवदास पाकिस्तान में बनी, वो सन याद नहीं मुझे, और फिर एक देवदास 2002 में बनी, और अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब तक तो लोग कहते हैं कि अरे भाई देवदास बहुत हो गए, लेकिन ये नगमा बहुत नहीं हुआ। क्या बात है, ये नगमा बहुत नहीं हुआ। तो पहले इससे कि भूल जाऊं, मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा ने फरमाइश भेजी है और कहा है कि दिस इज़ टू माई पेरेंट्स हरिवदन जी एंड गीता भट्ट साहिबा एंड सिस्टर्स रिद्धि सिद्धि, और भेज रही हैं समृद्धि कविता कृष्णा मूर्ति और के की आवाज़ों के साथ। फिल्म का नाम देवदास, 2002 की फिल्म है। हमें तो पहले ही फुरकत ने नहीं मारा था, समझ फरमाएं। और ये भी सोचें कि फुरकत यानी कि किसी की विरह में, किसी की याद में कोई मरता नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ अगर आपको फुर्सत मिल जाए गम को कायम रखने के लिए तो बहुत लंबा किस्सा है। हमें तो पहले ही फुरकत ने नहीं मारा था, और जो गम को पाले उसी फुर्सत ने हमें मारा है।

कभी ना जाऊंगा मैं अब किसी बुलाने पर, अरे कभी ना जाऊंगा मैं अब किसी बुलाने पर, इसलिए अपनी ही मैयत को मार डाला है। इस्माइल दरबार की मौसीकी देवदास वाज मेड इन 2002, जैसे कई बार कह चुका हूँ, और कविता सुब्रमण्यम कृष्णा मूर्ति और के इनकी आवाज़ें थी, और मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा ने अपनी अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को भेजा है, हरिवर्धन जी को, गीता भट्ट जी को और रिद्धि सिद्धि को भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्धि ठाकुर साहिबा। और अब वो उन्होंने पूरी फैमिली को एक और नगमा भेजा है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत नगमा है। देखें आप कि इस शेर से पहचानते हैं कि नहीं। महफिल में तेरी मुझको ही ना दाखला मिला, समात फरमाएं और गैस करें कि कौन सा नगमा होने वाला है। महफिल में तेरी मुझको ही ना दाखला मिला, किस्मत को आजमाने का ना हौसला मिला।

0: मुझमें अगर तू ना बेवफाई पाएगा, अरे मुझमें अगर तू ना बेवफाई पाएगा, किस्मत को बता कैसे भला आजमाएगा। शकीर बदायनी का कलाम था, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। नौशाद की मौसिकी और मुगले आजम फिल्म का नाम, ऑल टाइम हिट 1960 में ये फिल्म बनी थी। अगर आप लोगों ने बहुत दिन हो गए नहीं देखी, फिर देखिए, हर बार देखने से और ज़्यादा समझ में आती है और साथ साथ और बातें पता लगती हैं, जैसे कि पाकीज़ा उन्हीं में से है। अच्छा, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ें थीं, समृद्धि ठाकुर साहिबा की फरमाइश पर। टू हर फैमिली, वाह, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, और घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे। अब वो जो है ये माना मोहब्बत क्या है, जवानी बर्बाद करती है, इसको हमने बचपन में लिखा था। ये माना पढ़ाई बचपना बर्बाद करती है, और ये क्या कम है कि पढ़ जाने पे दुनिया याद करती है।
1: And Feroz ji, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And coming up on Gandhi's birthday, 2nd of October, is a play, a Hindi play, Jaane Pehchaane Anjaane. Sounds mysterious. Featuring Anupam Kher, of course, and Swaroop Sampat. So it's at Memorial Auditorium, Raleigh Memorial Auditorium, downtown Raleigh. And for more information, you can contact Arvind Mahajan. Again, that's the 2nd of October, Friday, at 8:15 p.m., downtown Raleigh, Memorial Auditorium.
0: और हुजूर वाला, अब चरणजीत लाल जी एंड कंचन लाल जी की एक और एपेक्स से फरमाइश रुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि प्यार करने की भला उम्र कभी जाती है? अरे प्यार करने की भला उम्र कभी जाती है? आज भी दिल मेरा तेरे लिए जज्बाती है।

0: जब जुज नहीं है बात में जज्बात नहीं है। आप समाप्त फरमाए, देखिए जुज कहते हैं एसेंस उसका, और या उसकी निचोड़ जो है उसका तात्पर्य है, और या ये सब। जब जुज नहीं है बात में जज्बात नहीं है, दिलबर नहीं जो साथ में बरसात नहीं है। शैलेंद्र का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, यहूदी फिल्म का नगमा था, ये 1958 में ही फिल्म बनी थी। लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा आपने समाप्त सुनाया, और अब प्रीति राज गोपालन फुकवे से भेज रही हैं मलयालम नगमा।
1: Yes, Safroz G, this is a recent hit from South India, from Southern India. It appeared in the soundtrack of Little Things 4, which was a television series, and it appeared in an episode of Masala Coffee, which is a music show. And the singer is Suraj Santosh, the composer is Suraj Santosh, the co-singer is Varun Sunil. And this is based on a traditional Malayalam song about going to the fair at Thrissur. Thrissur, and Afroz Ji and I have been to Thrissur several times. Really enjoyed it. Beautiful place in central Kerala, not too far from Kochi. So, once again, by request from Preeti Rajgopalan, yes, suniye, samat farmaiye.

0: And we hear the voices of Suraj Santosh and Varun Sunil from an episode of Masala Coffee. And this song also appeared in the Malayalam television series Little Things, Season 4.
1: Mohatram Janab Aziz Dost, Mo Hassan Sahab and Mohatrama Bhabi, Salma Hassan Sahiba ki farmaish par ye nagma, Muhammad Rafi and Asha Bhosle ki awaz mein kya baat hai, all time hit. मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा नगमा है, आप जरा देखें और फिर खुद ही कहेंगे हाँ अरे वाह क्या बात है, ये नगमा तो बहुत लाजवाब है, इसका हमें ज़माने से इंतज़ार था लेकिन फरमाइश नहीं भेजी। अब मैं शेर कहता हूँ उसके साथ साथ, हम छोड़ के जाएंगे ना जब तक न कहें आप। समात फरमाइए और ज़रा सा गैस कीजिए कौन सा नगमा हो सकता है। हम छोड़ के जाएंगे ना जब तक न कहें आप, और एहसान कहाँ छोड़ना आसान नहीं है।

कहते हैं लोग जिंदगी बस 4 दिन की है, समा फरमाएं कि कहते हैं लोग जिंदगी बस 4 दिन की है, सारी उम्र से 4 ही दिन गिन रहा हूं मैं। साहिल लुधियानवी का कलाम था हम दोनों, 1961 की ये फिल्म थी, जयदेव की मौसीकी के साथ एंड मोहतरमा आशा भोसले और मोहतरम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये नगमा आपने समाप्त फरमाया। अभी ना जाओ छोड़कर, हम भी अभी जाने के लिए तैयार नहीं है छोड़कर, लेकिन बता दें मोहतरम जनाब मोहसन साहब एंड मोहतरमा सलमा हसन साहिबा की फरमाइश आई नॉर्थ कैरोलिना से, यानी के राली से। मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की अब एक इम्तिहान आपका है कि मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा, आपने जो हमको नगमे की फरमाइश की हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। अब सवाल ये है कि हम आप तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपकी फरमाइश तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, हम देखते हैं इसको बिना सुने हुए आपकी आवाज़। देखें ज़रा, शक हो गया उसने कहा चाहत का शुक्रिया। ज़रा समात फरमाएं पूर्णिमा जी, शायद हम आपके इम्तिहान तक पहुंच चुके हैं। शक हो गया उसने किया चाहत का शुक्रिया, वरना तो चाहतों में क्या चाहत का शुक्रिया।

प्यार के काबिल जो समझा आपका एहसान है। अरे प्यार के काबिल जो समझा आपका एहसान है और आपसे उल्फत निभाना क्या कोई आसान है। राजा मेहंदी अली खान का कलाम था, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। पूर्णिमा गुप्ता साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने नगमा भेजा हमको। अनपढ़ फिल्म 1962 की फिल्म है, क्या बात है। मौसीकी मदन मोहन की, ऑफ कोर्स। ज्योति करीर साहिबा की एक और फरमाइश हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मॉरिसविल नॉर्थ कैरोलिना से आपने फरमाइश भेजी है, समाप्त फरमाइए आप अपनी फरमाइश, लेकिन पहले मैं कुछ कह दूँ। बहुत पुराना ये शेर है मेरा, लेकिन देखिए पहले इस तरह के शेर, इस तरह की लाइनें लिखता था। कभी लखनऊ की महफिल से कोई आवाज़ आती है, अरे कभी लखनऊ की महफिल से कोई आवाज़ आती है, और कोई मासूम शहजादी फ़ज़ा में गुनगुनाती है, और कभी ख्वाबों की चिलमन में, कभी ख्वाबों की चिलमन में ज़रा झनकार सी होकर हरी में नाज चिलमन से निकल कर मुस्कुराती है। लेकिन मैं तो अब आजकल ऐसा है कि मेरी शायरी में वो बात अब इस तरह से है कि सदियों से देखता हूँ हर रात एक ख्वाब, सदियों से देखता हूँ हर रात एक ख्वाब, मिट्टी की चिलमनों से कोई झांक रहा है।

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naila Mein Kho Jao Pakka Desi. Every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, Lahoya to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Sharpur, Louisiana to Ludhiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Jarzak to Sharjah, Florida to Murodabad.
2: This is Geet Bazaar Radio, Naira Ki Peshkash. We are your hosts, Afroz Taj, John Caldwell and Ravi Chirukli. Aur saath mein ye bhi kehta chalun, 10 se 12 subah, 10 se 12 sham. Hum aapki khidmat mein maujood hote hain, itwar ke din.
3: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with the new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
4: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
2: Parde mein jo kuch dekha, charcha nahi kiya. Khatino Hazrat. हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक शेर जानबूझकर आपसे कहने के लिए लाता हूं. पर्दे में जो भी देखा चर्चा नहीं किया. अरे पर्दे में जो भी देखा चर्चा नहीं किया. हां जब से मगर हमने पर्दा नहीं किया. तो खातून हजरात जो हम आज का शेर आपके लिए लेकर आए हैं उससे आपको याद भी दिला दें कि पर्दे के बारे में बातचीत होगी. कितने तरह के पर्दे होते हैं ये नहीं होते हैं. राजकुमार सिन्हा की पहली फरमाइश पर्दे के बारे में है. मुंतजर हजारों एक लम्हे के जलवे को. है मुंतजर हजारों एक लम्हे के जलवे को. कब हुस्न आम होगा और कब सलाम होगा. यू आर लिसनिंग टू गीत

0: हटा दो।
1: पर्दा छुए तो पहले ये सोच लीजिए, ये शेर भी मेरा है ऑफ कोर्स, बताने की तो अब जरूरत नहीं रह गई, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगला नगमा महनाज की आवाज में है, जो मेरी फेवरेट सिंगर हैं, बहुत स्वीट आवाज है। पर्दा छुए तो पहले ये सोच लीजिए, पर्दे के पीछे देखिए एक आग है छुपी।

कल की तरह से छोड़ के प्यासा ना जाइयो। अरे कल की तरह से छोड़ के प्यासा ना जाइयो, चेहरे से अपने आज तो पता उठाइयो।

0: बाहों में जो आओगे पर्दा नहीं टूटेगा। देखें आप इसको कि मैंने कभी इस तरह का ख्याल कभी सोचा नहीं, इसे लिखना पड़ेगा और लिखने में मजा आता है वैसे तो। बाहों में जो आओगे पर्दा नहीं टूटेगा, बाहों में तुम रहोगे और मुंह छुपा रहेगा।
1: बाहों में चले आ।

पहले तो अपना आशिक बेमौत मार कर वो। आप देखें जरा कि पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर पहले तो अपना आशिक बेमौत मार कर वो, शर्मा रहे हैं आंचल अपना संवार कर वो।

भाव। पर्दा नशीं गराज कहीं मिल भी जाओगे, समर्थन ही है कि पर्दा नशीं गराज कहीं मिल भी जाओगे, हम जानते हैं तुम कहां चेहरा दिखाओगे।

वो कौन हैं जो देख के देखा नहीं करते? समात फरमाइए, फिर दोबारा मैं कहता हूं, अरे वो कौन हैं जो देख के देखा नहीं करते और पर्दे की तरह रहते हैं, पर्दा नहीं करते।

मेरी शायरी है मुखबिर, सब कुछ बता रही है। समाज समाए मुखबिर कहते हैं इत्तला देने वाले को, उस किसी के बारे में बताने के लिए। मेरी शायरी है मुखबिर, सब कुछ बता रही है, और पर्दा नशीन चेहरा क्यों कर छुपा रही है।

पर्दा जो उठा मेरा, मेरा न बुरा होगा। समाप्त माए, जरा सा मुश्किल भी हो सकता है कि पर्दा जो उठा मेरा, मेरा ना बुरा होगा, जो राज भी खुलेगा वो आपका ही होगा। जो बात मैंने कही कि पर्दे की तरह रहते हैं लोग लेकिन पर्दा नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे में हैं और वो ऐसा लगता है कि पर्दा नहीं करते, पर्दे की शर्तें हैं और वो शर्तें ये हैं कि पर्दा ना करो इसकी जरूरत नहीं है, पर्दा आंखों का होता है, पर्दा करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की आदत ही सबसे बड़ा पर्दा है। हजारों लोग दुनिया से पर्दा करके चले जाते हैं लेकिन वो जाते नहीं, ख्यालात में रहते हैं। ऐसे ही हम जा रहे हैं मगर जा नहीं रहे, आपके ख्यालात में होंगे। वक्त मजबूर कर रहा है हुजूर वाला, और 2 घंटे 2 मिनट में निकल गए पानी की तरह हाथ से। और उसके बाद अगला नगमा दामोदर पांडे की फरमाइश के साथ हम डेडिकेट करते हैं इसको रमेश कालज्ञानम जी, आप भी सुने, बड़ा मजा आएगा। और 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वी आर योर होस्ट अफरोज ताज जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। आज जा रहे हैं, चलते चलते मैं कहूंगा जाते तो हैं महफिल से, दिल रह गया यहीं पर। हाय हाय, देखें आप, और अभी इतला मिली है। जाते तो हैं महफिल से, दिल रह गया यहीं पर, जिसने भी चुराया हो वही हाथ हिला दे। मोहब्बत जिंदाबाद।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

हो, बिग बॉस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एंड ये तो लड़ाई होती है ना यार, देखने में बड़ा मजा आता है। आई एम नॉट फॉलोइंग द शो एक्चुअली, बट या मैं कुछ हाइलाइट्स तो देख रही हूँ। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, in today's episode of Bigg Boss 20, Mahi, Vijay and Mary Kom get into a heated argument after a ration task leads to a clash between the two contestants. Mary asks Mahi to respect her while Mahi hits back saying, why should I respect you? Okay, this is something very serious. You know, when a woman 5-2 woman fight, it is always such an awkward situation for me. Like, mujhe lagta hai, yaar, aurte lad kaise sakti hain? Woh toh badi poised, bahut calm, bahut simple, suljhi hui hoti hain. Is it okay to fight? लेकिन हाँ, लड़ाई हो जाती है। Well, stay tuned for more only on Naira.

Aamir Khan reveals he was strongly against marriage counseling during split with Reena Dutta. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency. Nairan actor Aamir Khan recently reflected on his split with Reena Dutta, sharing that he was initially reluctant to see marriage counseling. Aamir said, "Main jab pehli dafa therapy to nahi thi wo. I think it was a more like a counseling. Jab Reena aur main alag ho rahe the, to us waqt hum log kariban 1.5 saal ek marriage counselor ke paas gaye the, to wo mera pehla experience tha therapy counseling ko lekar." Aamir admitted that he was strongly against the idea of opening up to a stranger. He recalled टेलिंग रीना, मुझे नहीं बोलना किसी स्ट्रेंज इंसान को कि मेरा क्या जज्बात है या मेरा क्या रिश्ता क्या रहा है. मैं किसी अजनबी को कैसे अपने दिल की बात उसके सामने कैसे रखूं. हाउएवर रीना इवेंचुअली कन्विंस्ड हिम एंड द एक्सपीरियंस चेंज हिज पर्सपेक्टिव ऑन थेरेपी कम्प्लीटली. आई थिंक थेरेपी इज अ वेरी इन थिंग नाउ एंड इट रियली वर्क फॉर सम पीपल. एंड इफ यू ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ थिंग्स ना, प्लीज डोंट हेजिटेट, गो गेट सम हेल्प एंड ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू डू सो. स्टे ट्यून्ड फॉर

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरबना नाइट्स। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। सात से दस में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम? शाम तो आपकी काफ़ी बेहतर होंगी क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी सुहावना हो रखा है। और इस प्यार भरे मौसम में एक कप अदरक की चाय मिल जाए और एक कप लाइक गरम चाय की प्याली हो, फिर कोई भी पिलाने वाली हो तो बात ही कुछ और है। एंड यू नो इट्स लाइक ऐसे प्यार भरे मौसम में एक प्यारा सा गाना अगर सुन लेते हैं तो शाम बन जाएगी। और आज की शाम तो मतलब इतनी अच्छी है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और हल्की बूंदाबांदी भी हुई तो चलता है यार। अगर आप आपके किसी लव वंस के साथ घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो तो हल्की बूंदाबांदी, चाय और ये बारिश, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंजॉय करते हैं पहला ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

0: Join the Morrisville Chamber of Commerce on Wednesday, October 1st from 4:30 to 6 p.m. for Life Sciences After Hours Unplugged at Horseshoe at the Hub RTP. Network with industry professionals, innovators and leaders and enjoy a lively panel and Q&A on the power of storytelling in life sciences. Visit morrisvillechamber.org to register. Media partner, Radio NIDA.
1: Movie dekhi thi, pav bhaji khai thi. पंजी गए थे
2: रॉन्ग 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है अरे भूली गया आ डेट तो याद रखवानी छोए गरबा लवर्स आर यू रेडी ऑन ऑक्टोबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझमें। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट। सब बातें करते हैं कुछ लोकल खबरों के बारे में। लोकल खबर आज की पहली यह है कि रॉक क्वारी रोड खुली। रैली की रॉक क्वारी रोड को कल एक बड़े गैस लीक के कारण बंद कर दिया गया था और निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइप डैमेज हो गई थी, जिसे अब पूरी तरह ठीक करके जो है वो खोल दिया गया है दोबारा। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इस रूट से जा रहे हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि इतने कुछ दिनों से ना बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही है, कभी रास्ता बंद रह रहा है, कभी गाड़ियों में चोरी हो रही है, तो नई जो पुलिस चीफ है उन्होंने ये सारे कामों को अच्छी तरह से अंजाम देने का ठाना है और काम जो है, कार्य जो है वो प्रगति पथ पर चल रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

निर्वाणा नाइट्स एंड आपने एंजॉय किया ये गाना। गाना था वाकई में काफी बेहतरीन एंड इस गाने ने वाकई में सेट करके रखी है इस इवनिंग की वाइब। तो एनसी करेज मैच अपडेट, विमेन्स सॉकर लीग में कल रात कैरी के वेकमेड सॉकर पार्क में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। लीग की टीम जो टॉप टीम है दैट इज गौथम एफसी ने एनसी करेज को 2-1 से हरा दिया। इस मैच को देखने रिकॉर्ड मतलब दर्ज हो चुका है कि 10,500 से ज़्यादा लोग जो है वो पहुंचे थे। मुकाबला इस कदर रंगीन था और इस कदर हल्ला मचा दिया था मुकाबले ने कि मैं क्या ही बताऊँ। और काफ़ी अच्छे ये जो सॉकर के फैंस है, बहुत सॉकर्स के फैन है इंडिया में भी, आप देखोगे तो सॉकर के फैन आजकल क्रिकेट से भी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। एंजॉय किया आपने, गाना सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नार अपन निर्वाणा नाइट्स। अगली खबर यह है कि अगर आप रैली धरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट RDU से इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान दें कि डेल्टा एयरलाइंस ने इसी साल अपनी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम की है, जिसका असर लोकल रूट पर भी दिख रहा है। मतलब आप पहले अच्छे से चेक करें और चेक करने के बाद ही पुष्टि करें कि ये चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों को दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये दिक्कत का सामना जो है वो करते करते इतनी मशक्कत हो जाती है कि बाद में ट्रैवल करने का मन ही नहीं होता। तो इसलिए पहले ही आप इन्फॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट करके रखिए, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, एंड आफ्टर दैट यू कैन बुक योर टिकेट्स। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, जो कि है पक्का देसी पक्का लोकल।

0: एंजॉय किया आपने गाना और हर तरफ एक ही गूंज गूंज रही है। डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ, जब से बप्पा का आगमन हुआ है, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, यही गूंज चल रही है। वातावरण जो है वो काफ़ी अच्छे सा है, सेट हो रखा है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, एंड भक्तिमय वातावरण है। सुख करता दुख हरता, ऐसे बप्पा विराजमान हो चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि बप्पा यार लाइक विसर्जन हो जाएगा। तो ये जो बात है ये अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी कहूँगा तो इतना इमोशनल हो जाता हूँ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, एंड कैसे चल रही है आपकी वीकेंड की शाम। एंड बहुत जगहों पे बहुत सारे कंपटीशन का आयोजन जो है वो गणेश फेस्टिवल में किया जा रहा है। धूमधाम से इंडियन कम्युनिटी जो है वो गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है। एंड हर साल बापा एक नया जोश, एक नई उमंग लेके आते हैं। उसी उमंग के साथ सुनते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.